0: Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99
11: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260 078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: यू आर लिसनिंग टू Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
3: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: at asianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
3: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
2: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
3: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
2: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
3: लीज रोड फेस्टिवल
2: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
3: आप भी
2: जरूर आइएगा
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
3: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
2: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644
4: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
3: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
3: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
5: बालियां अंगूठियां और हार
3: जो दुल्हन करे सिंगार
5: आज ही मामू काके की दुकान
3: खालिस सोने की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
5: आपकी शान
3: हमारी आन
5: क्वालिटी की पहचान
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
6: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
5: सोफी ज्वेलर्स
6: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
5: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
7: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
9: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश

0: पास फ्रेश केक्स एंड मैक्रम्स।
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिगो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिगम सुपर स्टोर। मेनिगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिगम सुपर स्टोर।
3: मेनिगम सुपर स्टोर।
4: You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: at authority.
1: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
2: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में,
1: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे।
2: फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ।
1: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
2: लीज रोड फेस्टिवल।
1: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर।
2: आप भी
1: जरूर आइएगा।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
2: दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काकी की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane Bradford BD95ER 01274914942।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
4: सोफी ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: To become a radio presenter, please call the studio 01274306677. Bradford Asian Radio.
4: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
2: 33 Wetley Lane Bradford 01274201679।
4: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
4: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
2: ओपन 7 डेज, 10 टिल 6,

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज और रोज़ा और कुर्बानी और हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब ले एतमाद नाम। मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवीज,
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: बादाब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
1: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
0: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
0: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
0: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
0: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
0: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स
5: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी चाहे बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
4: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
6: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
7: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر

0: 9:13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
11: Call the studio now. 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक

0: मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
1: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
0: फर्स्ट चॉइस
1: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
0: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
1: 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काकी की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
3: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274914942।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
4: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
7: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
7: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
9: टैक्सी लाइसेंस,
7: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
7: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
8: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
7: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर।
5: You're listening to Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
6: Dekh aakar koochay chaake gireban mein kabhi, Qais tu, Laila bhi tu, Sehra bhi tu, Mehmil bhi tu.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल
4: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
5: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
5: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
7: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317
6: खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत

0: पाकिस्तान जूलर्स तशरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान जूलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
0: पाकिस्तान जूलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274

0: Lady Staff, Sophie Jewelers, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. Sophie Jewelers.
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274306677. Bradford Asian Radio.
2: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
2: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
2: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
3: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
2: saferaider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
3: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
2: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।

कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, उम्मत को वो आका के लिए तोड़ रहा था। कंकर भला देते नहीं आका की गवाही, सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा था।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल
4: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
5: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
5: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
7: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
5: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल

0: 13:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274.
9: Lady Staff, Sophie Jewelers, 121 Oakland, BD94QU, 01274 056014. Sophie Jewelers.
0: To become a

0: Trainers a driving instructor with our audit approved trainers will get your truck, bus, a forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल
4: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
5: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
5: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
7: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
10: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: 9:13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट
12: टैक्सी लाइसेंस
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटली लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
11: safewayrider.bradford
7: का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफे राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटली लेन ब्रेडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

0: 9:13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल एंटरटेनमेंट
11: और एंटरटेनिंग प्रोग्राम होता है बिल्कुल जी ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM पर आशा अख्तर सुबह 9 के साथ आपको सलाम अर्ज करती हैं खुश आमदेद सुबह बखैर जी बखैर अगले हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 आते ही जी कॉल्स आपके लिए मैंने बहाल कर दी है प्रोग्राम में शिरकत करें और हमारे प्रोग्राम की जान तो जाहिर बात है सुनने वाले होते हैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी दिलचस्पी से, दिलजमई से प्रोग्राम नेगेटिव मेरा सुनते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और हमारे पास एक और नंबर है जी, व्हाट्सएप नंबर हमारा 07800599563, आप इसके ऊपर भी हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत आपकी कॉल्स का एहतराम किया जाएगा। और स्टूडियो में जब आप स्टूडियो के नंबर 01274306677 पर नंबर आप कॉल मिलाते हैं, आपकी कॉल को हमेशा इसका खैर मकदम किया जाता है, अकॉर्डिंगली आपकी ख्वाहिश और डिजायर का जी ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल सामने निक्राम सुबह 9 में ताजा ताजा खबरें हैं, ब्यूटीफुल हमारे पास अकवाल जरिए हैं, ब्यूटीफुल टॉपिक है, टॉपिक ऐसा कि आप झूम उठेंगे, वाओ, हमेशा की तरह वेरी सिलेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, आप कहेंगे वाओ, तबीयत हशाश बशाश हो गई, क्यों ना हो गई। मौसम की रंगीनियां, मौसम की ताजगियां, मौसम का साथ हमारे साथ हो, तबीयत खिली खिली निखरी निखरी उजली उजली रखती है। और सुबह नौ का मकसद भी यही होता है कि आपकी तबीयत को खुश रखना, आबाद रखना। और बहुत सी ढेरों ढेर दुआएं भी होती हैं, सामने क्राम मशक्कत आमीज काम में, मुशक्कत खेज कह लें हम, मुशक्कत से भरपूर काम है जी, जहां भी हर काम को मेहनत लगती है, हर काम हर हुनरकारी में हमारी मेहनत, और फिर ये कहें कि मेंटली इतनी स्ट्रेस समटाइम्स होती है, दिल चाहता है कि कोई बड़ा वो कहता है, कहते हैं ना कि तफरीह तबाह से भरपूर कुछ खुशगवार म्यूजिक सा हो जिसकी शुरुआत जिससे की जाए अपने काम की, और ताकि थकावट फील ना हो, किसी भी शुभाय जिंदगी में ताल्लुक हो सकता है इन अफराद का। हमारे पास जो इस वक्त मैंने कहा पहले आपकी तबीयत जो है वो बहाल की जाए, क्योंकि जो मौसीकी के शौकीन जिसे कह लें, जिनको जी बड़े दिलचस्प सॉन्ग्स, वो कहते हैं कि भई हमें रूखे फीके सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं सुनाना, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। मैंने सोचा जी ठीक है, आप के लिए प्रोग्राम है, फिर आप ही की नजर हम एक ब्यूटीफुल सॉन्ग करते हैं, और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है, टॉपिक भाई आपको थोड़ा सा सस्पेंस और सरप्राइज तो मैं रखती होती हूँ हमेशा की तरह, धीरे धीरे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, धीरे धीरे आपकी इच्छा और मन की तमन्ना जो है हम अच्छी तरह पूरी करेंगे, क्योंकि आप जो है मौसीकी के दिलदादा हैं, म्यूजिक के। और जो मुझे फीडबैक मिलती है कि प्लीज आपने खुश्क म्यूजिक जो है हमारी किस्मत में नहीं लिख देना, तो मैंने सोचा भाई आज का हर एक जो सॉन्ग है आपकी तफरीह तबाह को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और खूबसूरत सा हो। हमारे जो मौसीकी की दुनिया में मैंने पहले भी अर्ज किया था कि फनकार जो होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे जो होते हैं दाद पाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इनके फैंस होते हैं, और किसी एक जगह मखसूस जगह इलाके से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ये एक मखसूस जगह से ताल्लुक रखने के बावजूद पूरी दुनिया पे इनकी आवाज जब छाई होती है। अब मैं बात को मजीद इधर उधर तो नहीं लेके जाऊंगी कि जी इस वक्त वैसे पूरी दुनिया मेरी भी आवाज सुन रही है, आप बात समझ गए होंगे, बस यही होता है कि वो कहते हैं, सियाने कहते हैं, अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। बिल्कुल, बड़े बड़े अकलमंद हजरात, खवातीन हजरात मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहे हैं, थैंक यू जी। दूर क्यों जाना है जी, हमारी आशा भोसले जो है बैन अल अक्वामी सतह पर एक नाम माना जाता है, और इनकी ये लिरिक्स जो हैं वाओ, विद वीडियो तो इसकी क्या ही बात होगी। आपको ये एक गजल है जी, और गजल के शौकीन और दिलदादा जो लोग हैं यकीनन इसे पसंद फरमाएंगे। चलिए देर किस बात की है, वज़ीर सामईन इकराम आपकी नजर आशा भोसले की ये खूबसूरत सी गजल करते हैं। रोमांटिक गजल इसे लिखा गया है जी, आइए रोमांटिक सी गजल जो है ताकि मूड बहाल रहे। क्या ख्याल है आपका, चलिए सुनते हैं जी।

0: जी सामईन इकराम, चले अब मैं सोच रही थी कि जी थोड़ा सा लॉन्ग है ये सॉन्ग, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल सा और बहुत ही जल्दी हो गया गाना, ब्यूटीफुल था लेकिन चले खैर। ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर हमारी एक ब्रेक भी हमारा इंतजार कर रही है। हमारी वेबसाइट ब्रेफरेशन रेडियो .co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। सॉन्ग्स आपके लिए बहुत जबरदस्त तैयार करके रखे हैं जी, योर फेवरेट। यू विल एंजॉय दिस म्यूजिक टुडे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह तो कहना होता है ना, अच्छी बात है। एनीवे मैं देख रही हूं कि ये छोटा सा कुछ लिरिक्स जो है आपकी खिदमत में पेश कर दूं, तो चलिए। नहीं भाई, अभी एक मिनट रह गया है ये ब्रेक का जो टाइम होता है ना, हमें बड़ी एहतियात से देखना पड़ता है, क्योंकि भाई आप लोगों की कमर्शियल्स, आप लोगों की जो एड्स हैं वो चल रही होती हैं, तो उनको प्रमोट करना हमारा अवलीन फर्ज है भाई, तो फर्ज के ऊपर नजर होती है। इसके अलावा हमारा नंबर जो है 07800599563, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। अब क्या कहूं कि मैं खुद भी कल जो प्रोग्राम था महबूब इलाही साहब का भी, तो अक्सर मेरा प्रोग्राम जो होता है ज्यादातर मैं चलते फिरते कहीं किचन में हूं, कोई काम कर रही हूं कोने कुदरे में, लेकिन ये होता है कि हमारा आप जो है अगर आप डाउनलोड कर लें इसकी बहुत सहूलत है, और गाड़ी में भी आप DAB पर डैप पर हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ही खूबसूरती से सुनते सुनते सुहाना सुहाना सफर जो है वो तय कर लेते हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।
1: एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk, दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15-16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगा रोड ब्रेडफोर्ड में, जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे। फैशन, फूड स्टॉल्स, किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ, एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए। सैटरडे एंड संडे 15th and 16th of August 2026 लीड रोड फेस्टिवल।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रेडफोर्ड मेला।
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड PD95BR 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
8: सोफी ज्वेलर्स 121 Oak Lane BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider? You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 7-8.

0: बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
2: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्ट रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
2: फर्नीचर, कार्लाइट रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

मदर्स सावीन इकराम प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम में इसलिए खूबसूरत कहूंगी कि टॉपिक आज का आप बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो कि मैं अभी डिस्क्लोज करती हूँ। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं जी, बिल्कुल जो हमारा और आपका साथ है 10 बजे से 1 बजे तक होगा। तो वो वैसे ये अब उसकी बात है कि जब हम कहते हैं 10 से 1 बजे तक तो थोड़ा सा अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 फीट 22 फीट की बुलंदी पे जब जाता है तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है। मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमी बेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पे जहाज आता तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीन और हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना को जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम चुप करके बैठे हैं, डराती क्यों तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो brafrationradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी हमारे, और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि सॉन्ग जो है एक इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं क्या थोड़ा सा हट के, हमेशा ही तरह आयशा का मकसद होगा कि हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरी है, आपके जो काम है, वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत का शब्द, भाई हम क्यों नहीं, भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला, बिल्कुल जी मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जराह तस्करा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मुशक्कत कर रही है और हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। इससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया है मेरे सामने ये शेर है, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। बहुत खूबसूरत है टॉपिक हमारा, क्या मकसद है इंसान की तखलीक का। हमारा मकसद हयात क्या

है, क्या है भाई हमारा मकसद, क्यों दुनिया में आए हैं, ठीक है। इसके बारे में बातचीत भी रहेगी, आप भी हमें फीडबैक दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, और इससे पहले कि फिर आप कहें बहुत शकील बातें हो गई, खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं, न्यू पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग 2026। आइए जरा स्मार्ट फरमाते हैं।

जी बिल्कुल मजे सामीन इकराम ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है. म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है वाओ अमेजिंग आप खुद सुनेंगे आप कहेंगे जरा हट के है ये. जी बिल्कुल ए बड़ा बहुत जरा हट के ते बड़ा दिल छू लेने वाला जी ताड़ी नजर होने कर दे है बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज ये बोले थे फिर और तुसी कहोगे टू मच हो गया इसलिए वापस बैक टू स्क्वायर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं. जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर और नाजिर उतनी देर में कर लें और सोचें हम सब सोचें हमारा जिंदगी में आने का मकसद. अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ उससे पहले हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk है जी और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी. आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हम जी मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुदा नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं करते लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें कि भाई हम क्या करें लोगों ने बना दी है ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान बल्कि वही चलें अब करते हैं और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा. आपके पास बहुत नॉलेज होगा मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इल्म लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद हैं आपके अंदर ये सारा नॉलेज है वो अट्रैक्ट करता है आपको और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं. क्या ख्याल है आपका क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा. बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा. मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है मैं चाहती हूं कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन ले. एक तो जिन्होंने फरमाइश की है ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए. आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं.

0: Unit 93 Houghton Grange Road, Bradford 714-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा।

0: इंडिया टल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, टल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, सी रूम 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
1: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
1: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

जी बिल्कुल, मदरसा में इकराम ब्रा फेडरेशन रेडियो 1413 AM पर आयशा अख्तर के संग एक खूबसूरत सा प्रोग्राम में इसलिए जी बिल्कुल, मदरसा में इकराम ब्रा फेडरेशन रेडियो 1413 AM

थोड़ा सा, अरे घबराने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका सफर रखेंगे। जब जहाज जो है प्लेन एरोप्लेन चला जाता है 22 फीट 22 फीट की बुलंदी पे जब जाता है तो एयर होस्टेस जो है वो अनाउंसमेंट करती है। मेरा ख्याल है इतना ही फिगर कमोबेश होगा, चले कुछ कमी बेशी होगी तो आप खुद उसको अकाउंटिंग को जो है ना सही काउंट कर लीजिएगा, अकाउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमोबेश जब इतनी बुलंदी पे जहाज जाता तो एयर होस्टेस जो है, जब खवातीन हजरात इस वक्त हम 22,000 फीट की बुलंदी पर सफर कर रहे हैं तो जो बड़े नाजुक दिल होते कहते हैं बयान करना को जरूरी सी वो बताना जरूरी था, चुप रहती हम चुप करके बैठे हुए डराती क्यों तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बिल्कुल भी ये डराने वाली ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी बात नहीं है। आपका सफर इतना अच्छा रहेगा, इतना खूबसूरत कि आप खुद कहेंगे वाओ अमेजिंग एंटरटेनमेंट, होपफुली इंशाल्लाह। तो हमारी वेबसाइट जो है वो bradfordnationradio.co.uk है, उसे भरपूर इस्तेफादा हासिल करें। और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। हमारे और जो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें जो है हमारे मोबाइल के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 07800599563। बहुत कुछ अब याद आ रहा है, धीरे धीरे डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि सॉन्ग जो है एक इस यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये रोमांटिक सॉन्ग 2026 का है, ब्यूटीफुल है जी, पंजाबी सॉन्ग है। तो मैं के थोड़ा सा हट के हमेशा ही तरह आयशा का मकसद हट के धमाकेदार एक म्यूजिक पेश करूं कि आपकी जो तफरीह है, आपका जो काम है, वो कह रहे भाई हम फैक्ट्री में मजदूर तबके के लिए आप जिक्र करें, भाई फैक्ट्रीज जितनी भी है जहां जहां मजदूर तबका, वो कहते हैं हम मेहनत कश है, भाई हम क्यों नहीं, भाई आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं अलकासिबू हबीबुल्ला, बिल्कुल जी मेहनत करने वाला अल्लाह का भी दोस्त है। और ये जराहे तज़किरा बहुत बहुत खूबसूरत सी बातें आप सबके लिए, हमारे सब सुनने वालों के लिए, हमारे सब लिसनर्स के लिए, और स्पेशली जो इतनी मुशक्कत कर रही है, हमें फीडबैक और कॉल्स आ रही है उसका भी जिक्र करते हैं। उससे पहले हमारा टॉपिक अब और क्या, मैंने सस्पेंस रखना बहुत खूबसूरत आप सबके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए, वर्ल्ड वाइड जहां मेरी आवाज जा रही, इंसान की तखलीक का मकसद क्या है। अभी मुझे शेर का जी जवाब मिल चुका है जी, एक हमारे रेगुलर कॉलर जो मैनचेस्टर से चौधरी रुखसार अहमद साहब, उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन मैं फिर उसको अभी सीगाए राज में रखती हूं, उसको डिस्क्लोज नहीं करना, और भी कॉल्स लेनी है। इतना ब्यूटीफुल सा शेर, आप कहेंगे लो जी हमें तो वो भूल भी गया, तो भूलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी चले वो किधर गया है, मेरे पास भी इधर था, तो अभी बातों बातों में जी आ गया है मेरे सामने ये शेर है, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में जिनको आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, जिनको नहीं आता वो तलाश सर्च जरा करें, और हर एक जवाब जो है बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, बहुत खूबसूरत है। टॉपिक हमारा क्या मकसद है इंसान की तखलीक का, हमारा मकसद हयात क्या है, क्या है भाई हमारा मकसद, क्यों दुनिया में आए हैं, ठीक है। इसके बारे में बातचीत भी रहेगी, आप भी हमें फीडबैक दें, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो, और इससे पहले कि फिर आप कहें बहुत शकील बातें हो गई, खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं, न्यू पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग 2026, आइए जरा स्मार्ट फरमाते हैं।

जी बिल्कुल मजे सामीन इकराम ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर आशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक सुबह नौ में लेके आई है। म्यूजिक भी आप लोगों का फेवरेट जो है चल रहा है और इस वक्त मेरे पास जो फरमाइश भेजी गई है वाओ अमेजिंग आप खुद सुनेंगे आप कहेंगे जरा हट के है ये। जी बिल्कुल ए बड़ा बहुत जरा हट के ते बड़ा दिल छू लेने वाला जी ताड़ी नजर हुने कर दे है बहुत ही खूबसूरत जिया चंगा जिया उन्हें ज्यादा पंजाबी दे लफ्ज जी बोले थे फिर और तुसी को टू मच हो गया इसलिए फिर वापस बैक टू सिंगर हम अभी उर्दू पे फिर आ जाते हैं। जी बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपका इंतजार कर रहा है जी और मैं चाहती हूं कि आप सब भी अपने जहन को हाजिर और नाजिर उतनी देर में कर लें और सोचें हम सब सोचें हमारा जिंदगी में आने का मकसद। अगर इतनी बात जरूर कह देती हूँ उससे पहले हमारी वेबसाइट bradfordhmradio.co.uk है जी और हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी और हमारी मोबाइल नंबर 07800599563 है जी। आप कहेंगे कि मैंने कहा कि आप कहेंगे कि हाँ जी मैं आप पे ये वाजे कर दूं कि चूंकि ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम चल रहा है अगर हम इसको मजहबी लिहाज से देखें वैसे तो देखिए हम मजहब और डेली रूटीन लाइफ को दूर एक दूसरे से जुड़ा नहीं करते हैं बिल्कुल भी नहीं करते लेकिन फिर वो जो बहुत हमारा डीप और बहुत ही एक इमोशनल जो होता है और बहुत ही खूबसूरत सा होता है एक हमारे बिल्कुल टोटली जिसे हम कहते हैं कि अगर हम दुनियादारी से भी उसको थोड़ा सा एक साइड पे रखें कि एक दुनिया क्या करें कि भाई हम क्या करें लोगों ने बना दिया ये टर्म कि दुनियादारी है और दीन है खैर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा हमारे पास इस्लामी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वो भी इंशाल्लाह साथ चलें करेंगे उसमें गुफ्तगू के दौरान बल्कि वही चले अब करते हैं और साथ साथ दुनियादारी के साथ चलते हुए क्या मकसद है हमारा आपके पास बहुत नॉलेज होगा मुझे बड़ी खुशी होती है इतने महज़ब मुअद्दब बाज़ौक और अहले इल्म लोगों के दरमियान प्रोग्राम करते हुए कि दुनिया के खित्ते से कहां कहां से और पाकिस्तान से मुझे जो कॉल्स आती हैं और उनकी फीडबैक आती है मैं आप सबको बहुत ज्यादा इसकी आप सबकी ममनून और मशकूर और शुक्रिया आप सबका अदा करती हूँ और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिकॉज आप खुद एक बहुत दानिशमंद हैं आपके अंदर ये सारा नॉलेज है वो अट्रैक्ट करता है आपको और फिर वो हम गिव एंड टेक पॉलिसी भी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका क्या ऐसे चलें तो क्या बेहतर नहीं होगा बिल्कुल ऐसा बेहतर होगा। मेरे पास एक फरमाइश बहुत ही खूबसूरत है मैं चाहती हूँ कि अगली नेक्स्ट ब्रेक पर जाने से पहले ये थोड़ा सा हम फरमाइशी सॉन्ग सुन ले एक तो जिन्होंने फरमाइश किया ऑब्वियसली उनकी भी ये दिली तमन्ना होगी कि जी वो सॉन्ग आए और वो मेहनत करते हुए अपना जो मेहनत में दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा लगे तो हम सबको अच्छा लगना चाहिए। आइए ये फरमाइश जो है पूरी करते हैं और एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी नजर करते हैं।

0: کیا بات ہے جی کیا بات ہے میں کہتی ہوں کہ واقعی داد دینے کو دل کرتا ہے فرمائش کرنے والے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور جس نے یہ سانگ گایا ہے اس نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی میوزک اگر ایسا ہو تو واقعی میں کہتی ہوں پروگرام کو تو چار چاند لگنے ہی لگنے اور ہماری آڈینس اتنی خوبصورت چوائس کی حامل ہو تو بھی ہم ان کو داد دیتے ہیں ہم آپ ہمیں اپنے ہمارے پروگرام کی کیا داد دیں گے ہم تو آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے اتنا خوبصورت سانگ سنا واقعی واقعی بہترین میوزک جی بہت بہترین کیا کریں کیسے کریں کہ گھڑی جو ہے نا ہماری وہ ہمیں یاد کراتی ہے کہ چلتے ہیں ہم بریک پر ابھی تو چلنے سے پہلے یہ ایک جی ہمیں ابھی فیڈ بیک جی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اس وقت جی یہ میں دیکھتی ہوں جی ان کا کیا آیا ہے بیوٹیفل سانگ ہمیں پاکستان سے شام جی نے جوائن کیا ہوا ہے تھینک یو ویری مچ شام جی آپ کو موسٹ ویلکم ہمارے پروگرام میں یہ خود ان کے پروگرامز اتنے لاجواب اتنے بہترین کہ یہ ونڈرفل جسے کہتے ہیں نا ایک پریزنٹر ہے ہمارے پاکستان میں شام جی اور بیوٹیفل سانگ جی بہت شکریہ نینا دا کی کرا کیا بات ہے لو دس سانگ آپ کیا میرے خیال میں سب نے پسند کیا ہے آئی لو دس سانگ از ویل آئی ریئلی ریئلی انجوائڈ دس سانگ آئی ریئلی لو دس سانگ بیوٹیفل ایور جی اور سانگ اچھا جی شامل ہوتا ہے وہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ہر شو میں یہ پروگرام یہ ہمارے پاس سے چونکہ واٹس ایپ کا یہ جو ہے نمبر ہے جی تو وہ ہمیں پاکستان سے ان کے جو کامنٹس ہیں ان کے جو فیڈ بیک ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ملتی ہے جی اور بہترین اور آپ سب کا جہاں جہاں دنیا بھر میں ہمیں جس جس نے جوائن کیا ہوا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ جی اور آپ کا پروگرام کو سراہنے کا شکریہ بلکہ دیکھیں آپ اتنی خوبصورت ہمیں بھیج رہے ہیں چوائس اور فرمائش تو اس کی وجہ سے سب کو یہ پروگرام جو ہے سننے کو مل رہا ہے اور ونس اگین آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور ہماری گھڑی جو ہمیں لے کے جا رہی ہے بریک کی طرف تو آفٹر دا بریک اس سے بھی بہترین بہترین نہیں بھائی ہر سانگ کی اپنی ایک ہوتی ہے کیا کہتے ہیں اس کا یونیک پن ہوتا ہے ہر سانگ یونیک ہوتا ہے لیکن اور بھی چلیں گے ایسے کہہ لیتے ہیں اور بھی بہت سے خوبصورت ہمارے پاس میوزک نغمات ہے اور ہمارے پاس جو ہمارے ٹاپک کا ہم شروعات کریں گے یل ول like that as well challenge
1: Asian radio
2: and the winner is
1: your business being heard on the radio
3: become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian radio advertising's ear catching affordable and effective it's the ideal way to get your business noticed So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: اوف اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے کیا ہی چوائس ہے آپ کا
5: یہ چوائس ہمارا نہیں یہ تو کمال ہے فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا
4: جو کہ پائیدار مضبوط خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
5: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں
4: فرسٹ چوائس
5: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL
4: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
5: 01274317644
6: کوالٹی ویلیو اسٹائل اینڈ سیکورٹی یور نمبر ون چوائس فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر
7: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
8: Pune Dubai
5: असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN। बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
5: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
5: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
5: 07548419678।
8: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
7: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
0: वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये हमारा भी जो रेडियो का चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रेडियो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM। वाओ जी, हमने भी बड़े बड़े हवाए रोज एंड देन इंजीनियर तो कभी किसी ने नहीं कहा था। हमने कभी ये नहीं सोचा था हम गर्दारी संभालेंगे। नर्स कभी कभी कभी कोई लिख देती थी, बस डॉक्टर से नीचे नहीं उतरना। और हर किसी से पूछो। और मैंने आपको पहले भी बताया, बड़ी मजे की बात है। और मैं चाह रही हूँ मजे मजे की बातें सुनाते हुए हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ता जाए। हम जब अपने अल्लाह याती देव में ब्रादरान की तरफ बिशा जाहिर बात है उनसे बचे होते थे, तो फॉर्म फिल करवाने आते, भाई प्लीज फॉर्म फिल कर दो ना, तो हाँ जी तो क्या बनना है, उन्होंने कहना बस इस्लामियात का लिख देना, होम इकोनॉमिक्स लिख देना। और हम कहते हैं होम इकोनॉमिक्स क्या है? अब दिस इकोनॉमिक्स है ये, अब उसको पता चल रहा है। लेकिन बच्चे ने वो हमारे यूजुअली आपको पता है कि खानेदारी करवाते थे, डिफरेंट देखते कि किसने आपको बहुत कुछ पता होगा इस बारे में, इसकी तफसील में क्या जाऊं। और कुछ वो जैसे कहते हैं हम यहाँ भी बोलते हैं चीकी लफ्ज के बड़ी, वो जी घर से पका के ले आती है और उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती कि वाह टीचर उनको हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता, हम बड़ी वो बाअदब बाअसूल के तरीके पे हम वहां पे खाना बना रहे हैं, हमारी सिस्टर्स हमारे साथ में खड़ी होती बड़ी ये क्या करेगी तो वो सारी हेल्प करवा देती चुपके से बैठ के। बड़ा खूबसूरत दौर, बहुत ही अनमोल, जो कि आ नहीं सकता। तो खैर फिर वो इसी तरह से हमें तो ये मतलब दिया जाता, तो फिर हम कहते अब मैं अपना एम ऑफ लाइफ ये लिखूं कि मैं होम इकोनॉमिक्स पढ़ के मैं क्या करूंगी इसको, तो तब समझ नहीं आती थी कि खुदा की बंदी ये तो तुम बहुत अच्छी बन जाओगी, एक तुम अपनी ड्यूटीज अपने बहुत इसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं ना, बस डॉक्टर से नहीं हिलना, हमने तो बंदे क्योंकि डॉक्टर ये करता है डॉक्टर वो करता है खुदाया अब मैं क्या करूं। तो फिर कभी कभी आ जाता था कि चले टीचर बनना है, तो घर वालों ने क्या पूछना है क्या बनना है। देखिए बहुत ही बेहतरीन चुटकुला है ये, बड़ा अच्छा लगता है, जरा तस्करा बात छिड़ गई है तो किसी ने पूछना, बुरा घर ने बड़े वो मजाक के मूड में होते थे ना, बस छेड़ना है उन्होंने तो कहना क्या बनना है जी, मैंने कहना उस्तानी, वो बस जल्दी में निकल मस्तानी हमने पीछे मर जाना, तुमने कहा क्यों ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो ये बातें जो होती है ना, ये इस नाम पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम, लेकिन मुझे याद आ जाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी खूबसूरत सी बातों को दोहराना और आपसे। और शायद मुझे अब तो मुझे पता चल रहा है कि रेडियो में बातें करते करते ना मुझे बारी बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि मैं ज्यादा बातें ना करूं, वरना बात कुछ कुछ ऐसी नजरें होती हैं कि आप कब चुप करेंगी और खैर चले छोड़ेंगे। तो वो भी इसलिए कि देखे कभी कभी मौका मिलता है बात करने का। खैर इससे पहले कि आपके पसंदीदा और फेवरेट हम सॉन्ग के ऊपर जाएं जी, मेरे पास एक जो नामवर शख्सियात हैं उनके कुछ बहुत ही चुटकुले हैं मेरे पास, तो क्या ख्याल है कि आयशा अख्तर के छोड़े आप क्या मेरे चुटकुले सुनने हैं, आप आए बढ़ते हैं ये बहुत ही खूबसूरत। देखें जी अब ये बात किसने कही है बाद में बताती हूं, बात सुन लें। दुनिया में कामयाब जोड़ा सिर्फ जुराबों का है कि एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। क्या खूबसूरत बात है, किसने कही है, मस्तन सर हुसैन तारड़ साहब ने। दूसरी मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत बात कह ले चुटकुला कह ले, बहुत खुश होंगे वैसे हमारे ब्रादरान साहब हमारे मर्द हजरात, ये बहुत ही एक बेहतरीन सा चुटकुला मेरे पास है कि मुझने और मेरी बीवी में बड़ा अजीब सा इत्तफाक है, नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। ये किसने लिखा है जी, इब्ने इंशा ने। इंशा जी उठो अब कुछ करो तो ये इब्ने इंशा ने लिखा है, क्या ख्याल है जी आपका। आगे मेरे पास एक चुटकुला है जी, वो कहते हैं कि जी मैं खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को पाकिस्तान में, सॉरी मैं ऐसे पाकिस्तान, देखिए अब बात हो रही है, हम कोई बुरी बात तो नहीं कह रहे, एक यहाँ पे फ्रीडम है बात करने का, तो फ्रीडम के लिहाज से बात कर लेंगे कि पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को आता है, वो खामोशी से खाते हैं। किसने बात कही है ये, देखिए मैंने नहीं कही, आप मेरे ऊपर फतवे नहीं सादर कीजिएगा, ये अनवर मकसूद साहब ने कही ये बात, क्या ख्याल है। अच्छा जी आगे हमारे पास है एक खूबसूरत सी बात कि हम इतने अमन पसंद हैं कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है। क्या ही बात है, ये किसने लिखी है जी, ये लिखते हैं मुश्ताक अहमद यूसफी साहब। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में, शराब पीकर बोला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर बोला जाता है। कौन हो सकते हैं? खादिम सादात पाकिस्तान। सोचिएगा, ये हकीकत है जी। आगे है जी, हमारे बाचा खान ने फरमाया है कि हिसाब अगर जज से मांगो तो तौहीन अदालत, अगर मौलवी से मांगो तो काफिर, और अगर जर्नैल से मांगो तो गद्दार। क्या बात है जी। हमने अपना दामन जो है एक साइड पे रखा और आपको बड़े खूबसूरत से ये चुटकले जो है सुनाए। बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है, मैंने तो एज इट इज आपको सुना दिए। वैसे वाकई ये हकीकत भी है, सोचिएगा इस बात में, इस बात के बारे में। सलाम इकराम जी, इस वक्त हमारे पास एक खूबसूरत सा सॉन्ग है, आप बताइएगा, आप सबके लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत पसंद करेंगे। आइए खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं।

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीड्स रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 और 16 अगस्त को एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहा रोड ब्रैडफोर्ड में जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15th एंड 16th ऑफ अगस्त 2026 लीड्स रोड फेस्टिवल
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ दिस ईयर्स ब्रैडफोर्ड मेला
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी Purity. Your number one choice, first choice, Windows Yorkshire.
6: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काकी की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
6: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 12 Footlane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी अरे बेटी अरे बेटी अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: ज्वेलर्स सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274 Sophie Jewelers.
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 30 00 66 77. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit approved trainers or get your truck, bus, or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Safeway Rider, helping you secure your future.
3: सुनिए सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट दिलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही दिलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैपेक्स, लैपेक्स लैमिनेट, लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी आइए, और दीदा जेब जेब जेब जेब जेब जेब जेब जेब जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी मेनी स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
2: मैनिंगम सुपर स्टोर।

और दूसरा हमारा नंबर है 07800599563। बिल्कुल एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी होल्ड ऑन किया हुआ है और एक फरमाशी सॉन्ग भी है इसके बाद, वो मैं आपके लिए लगाऊंगी वो सॉन्ग भी। तो उम्मीद करती हूँ कि हमें आज के टॉपिक से रिलेटेड के हम सबको मिल के, क्योंकि हम सब जो है हम दूसरों को किसी को कि वो ऐसे हैं, तुमने ऐसे किया, उसने, ये कहने की बजाय कि हम सब खुद मिलके हमें देखना है कि हमारा जिंदगी में आने का मकसद क्या है, आया कि हम इस मकसद को पूरा कर रहे हैं, हमें कैसे इस मकसद को पूरा करना है, हमने अपनी परफॉर्मेंस जो है इस दुनिया में कैसे देनी है, अपने से रिलेटेड जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं उनको खुश रखने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी है। बाकी तो बाकी दुनिया का निज़ाम सिस्टम सबको पता है, किसी फर्द वाहद का ये नहीं है कि जी गिले शिकवे शिकायतें ये सारी जो है इनको कैसे भुलाना है, कैसे जिंदगियों को खुशगवार बनाना है। हमारे हाथों में है कि अपनी जिंदगियों को हम खुशगवार भी बना लें या खुश्क बना लें, या अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत एक महाज़राई का जिसे कहते हैं मैदान बना लें और एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हों, दूसरों को मुर्दे अल्ज़ाम ठहराएं। खुद हम कहाँ तक हैं, किस कहते हैं कितने पानी में हैं, वो बहुत बातें आ जाती, कोई कहता है कि अपने गिरेबान में जान के, या कोई कहता है हम कितने पानी में हैं। इन सब बातों को हमने मद्देनजर रख के ये जिंदगी जो है अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसको गुजारना है। बस इतना जरूर ख्याल रखना है, रखिएगा, मैं खुद को भी कहती हूँ कि इतना ख्याल जरूर रखिएगा कि किसी का दिल ना दुखाया जाए और किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। और मैं क्या क्या कुछ कहूँ कि वही बात मैं तो यही कहती हूँ कि जिंदगी अपने हाथों में है, हम इसे चाहे तो गुलजार बना दे, चाहे तो नरक जिसे कहते हैं जहन्नम बना दे। क्या ख्याल है आप सबका, कहाँ तक आप इससे मुत्तफिक और एग्री होते हैं जरूर बताइएगा। और हमारे नंबर्स जो है आपके पास है, हमें जरूर इसी तरह से फीडबैक जो है अपनी जरूर भेजिए या भेजा करें। प्रोग्राम्स आप लोगों के लिए होता है और हमेशा से कोशिश होती है कि इसे मुनफरद से, मेरी कोशिश हमेशा से होती है कि मैं अपने प्रोग्राम को मुनफरद जाज़बे नज़र, और जाज़बे नज़र तो अब हम हमारा तो चूंकि ओरल होता है, सिर्फ सुनने की हद तक होता है, लेकिन जाज़बे नज़र आप खुद बना सकते हैं, उसकी उस सॉन्ग की कोई वीडियो लगा के वही आप खुद भी सुन सकते हैं। तो खैर पर्सनालिटीज हमें ऐसी जाज़बे नज़र बनानी है कि जिससे जब कोई मुलाकात करे तो वाकई वो कहे कि इसको याद है कि मकसद हयात हमारा क्या है। यही है जी आज के प्रोग्राम का मकसद भी, पैगाम भी, और सबका पैगाम जो होता है सबके लिए होता है। मैंने सबकी जो है फीडबैक भी आपके सामने शेयर की कि सिर्फ मेरा ही नुक्ता नज़र नहीं है, ये हमसे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम सुनने वाले सामईन इकराम उन सबका नुक्ता नज़र क्या रहा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मुझे खुद भी जब इतनी बावकार शख्सियात के साथ प्रोग्राम करने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ा लुत्फ भी आता है प्रोग्राम करने का। आई रियली इंजॉय द प्रोग्राम के, और वो वैसे भी मैंने एक चल रही थी वीडियो जिसमें बता रहे थे कि अगर आपको अपने काम करने की जगह से मोहब्बत नहीं है तो वो फिर आपका वहां पे टाइम जो है ना वो वेस्ट करना है आपका, कोई फिर जो टाइम जो है ना, अगर आपको अपने काम से, अपने काम से, अपने काम करने की जगह से मोहब्बत होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है, हमारा मकसदियत हयात जो है, और इनको पॉजिटिव सेंस में हमने कैसे लेना है, कैसे रखना है अपने आप को पॉजिटिविटी में। और नेगेटिविटी जो है ऑनेस्टली इतनी तेजी से समटाइम जो है वो सर्कल करती है कि फिर वो डिप्रेशन एंजाइटी को जो है वो जरिया बनते हैं।
ऐसे माहौल को

हमने कंट्रोलेबल जिसे कहते हैं बेरेबल कैसे रखना है, ये मैं बहुत हद तक अपने समेत हम का मैं सीगा इस्तेमाल करती हूं, ये नहीं ओ तू इदा ओ उन्हें इदा किता ऐदा कर रहे आ ओ इदा कर रहे आ ओ ऐस हर जी माशरे विच अच्छे नहीं होंगे या बुरे नहीं, या बात को कवर करने की कोशिश करना दिस एंड दैट से मुबर्रा हो कि हम सब इसमें, हम मैं खुद भी शामिल हूं, सभी इसमें आ जाते हैं, सभी की ये मुश्तरका कोशिशों से एक अच्छा जीवन जो है वो तश्कील देता है, और इस अच्छे जीवन की तश्कील में हमने अपने रोल को बड़ी ही खंदा पेशानी से बहुत खूबसूरती से अदा करना है। ये तो मैं बातें प्रोग्राम की नस्बत से कर रही हूँ, वैसे देखा जाए वाकई इंसान जिस जगह पे काम कर रहा होता है उसका इम्पैक्ट जरूर उसकी पर्सनालिटी पे पड़ता है, जरूर पड़ता है। इसमें मेरे लिए इस्लामी हवाला जात भी बहुत है, फिर आप कहेंगे इस्लामियात में फिर आप उधर को चल निकली हैं, तो इंशाल्लाह सम अदर टाइम जरूर, वो बहुत ही खूबसूरत मैं तो अक्सर ही फिर अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं मेरे फ्राइडे के उसमें माशाल्लाह वो खूबसूरत जो कोड करती हूँ वर्डिंग और खूबसूरत सेंटेंसेस हमारी इस्लामी हिस्ट्री की पर्सनैलिटीज का, तो बात यही है कि मैं खुद भी इस बात से सहमत जिसे कहती हूँ एग्री करती हूँ कि वाकई आप जिस जगह पे काम कर रहे होते हैं उसका अक्स आपकी पर्सनालिटी पे झलकता है। तो एक यही ना कि फिर बात मैं जो करती होती हूँ कि अच्छाई दूसरों के लिए हम जब बोते हैं तो उसका फल अपने घर में जब देखते हैं खुशी से आंसू निकल आते हैं कि मैंने हमेशा अच्छाई फैलाने की कोशिश की और मेरे रब ने मुझे तिश्ना लब नहीं रखा, मुझे महरूम नहीं रखा, और जरूर उसका अच्छाई का सिला मिल जाता है। कहते हैं ना कि नेकी की उम्र बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, भलाई इंसानियत और लोगों का जी देखना जजमेंट करनी के ये तो बस अगर हम हम्बल हैं, मैंने वो बहुत दफा ये बात डिस्कस हुई है, हम्बल से क्या मुराद आप लेते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल डैमेज नहीं करना होता या उनको इग्नोर नहीं करना होता, हमारी पर्सनालिटी वही रहती है लेकिन हमारे आइडियाज हमारी सोच दूसरों से रवैये जो है वो बड़े हम्बल हो जाने चाहिए। वो जब हम्बल होंगे एक बात को आप बड़े खूबसूरत अंदाज से तलख बात को भी खूबसूरत अंदाज में कह देंगे तो दूसरा जरूर सुनेगा, लेकिन एक अच्छी बात को भी आप तलख लहजे में करेंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ

जी बिल्कुल सामईन इकराम, हमारे पास इस वक्त एक होल्ड किया हुआ बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, आइए ये सुनते हैं, फिर गुफ्तगू को हम अपने इख्तितामी मराहल में शामिल करेंगे।

जी बिल्कुल, सामईन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर इतना खूबसूरत आज का प्रोग्राम रहा। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये पल जो है ये सदियों पर मुहित हो जाएं, और स्पेशली जब हम मिल के सब एक अच्छी बातों को तश्कील देते हैं, अच्छे डगर पर चल रहे होते हैं और एक ऐसा सुहाना सा मंजर जो है क्रिएट हो जाता है कि हम उसको आंखों से ओझल नहीं होने देते। हम चाहते हैं कि ये लम्हे जो हैं हमारी जिंदगी पर मुहित हो जाएं और पल दो पल का सफर जो है वो सदियों पर मुहित हो जाए। क्या ऐसा है? ऐसा ही सोचते हैं वो इस सेंस में कि जो अच्छे खूबसूरत पल होते हैं ऑब्वियसली सबको बड़ी तस्कीन देते हैं, और यही कोशिश होती है कि जब भी प्रोग्राम आपके साथ मैं करूं तो ये पल और जितने लम्हात हैं वो खुशियों में, खूबसूरतियों में डल जाए। इंशाल्लाह दुआएं हैं और हमेशा दुआओं के हिसार में रहते हैं। मजीद गुफ्तगू से पहले हमारी वेबसाइट prefrationradio.co.uk है और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर जो कि आज खूब इस्तेमाल हुआ, बहुत अच्छा लगा और अच्छी सेंस में, 01274306677, और दूसरा नंबर जो है वो 07800599563, और बहुत ही उम्दा और म्यारी मुझे खुद को जो है गुफ्तगू आप सबकी सुनने को मिली, और स्पेशली पाकिस्तान से हमें जो कॉलर्स ने ज्वाइन किया, स्पेशली श्याम जी ने, और फिर हमें चौधरी नुकसान अहमद साहब, तो अब मेरा ख्याल है कि प्रेफरेशन रेडियो का एक टीम का हिस्सा जिसे कहते हैं ना, वो बन गए हैं कि वो खुद अपनी जो उसमें फीडबैक के साथ साथ नॉलेज जो है वो फ्राहम कर देते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया किस्म की होती है। और फिर देखिए, ये तो हमारा मतलब चले कि हम यूके साइड की तरफ से देखते हैं, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर लाइक पाकिस्तान से हमें कॉल किया जाना और वहां पे उन्होंने हमें, मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ जी आपको, अगर आप सुन रहे हैं श्याम जी के, आपने जाहिर है कि उन्होंने उनकी कॉस्ट लगी है उस कॉल के ऊपर, तो ये एक बहुत ही ज्यादा मैं समझती हूँ कि उनकी ग्रेटनेस है कि वो खुद भी इतने अच्छे प्रेजेंटर हैं और फिर वो शामिल होना और उनकी खूबसूरत गुफ्तगू रही, और ये फिर बाकी ओवरऑल जो है जहां कहीं से भी हमें हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम ने सुना सराहा, ये हमारे लिए ऑनर की बात है, स्पेशली प्रेफरेशन रेडियो के लिए कि हम जो आए दिन इसमें खूबसूरत जो है प्रोग्रेस हो रही है और आपको नजर भी आ रही है वो प्रोग्रेस, करीब एक बहुत ही खूबसूरत गैदरिंग की शक्ल में वो मेरा क्लू आप समझ गए होंगे। इतना ही समटाइम्स मैं क्लू देती होती हूँ और कहती हूँ अकलमंद के लिए इशारा ही काफी होता है तो वो भी आपको इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे आमीन तो नजर आ जाएगा जी। जो कोई जो जैसी कारकर्दगी करता है सामने आ जाती है मंजरे आम पे, तो कोशिश हमेशा यही हम सबको करनी चाहिए कि हम अच्छे कामों में मुलव्वस रहें और अच्छी खिदमात अपनी जो है वो सोसाइटी में अंजाम देते रहें। हमारा वजूद जो है वो दूसरों के लिए आसानियां तकसीम करने वाला हो, हम आसानियां तकसीम करें और खुद भी अल्लाह ताला में आसानियां ताप फरमाए और नफ्स मुतमईना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नफ्स मुतमईना पर हम जो है उसकी जानिब अपने सफर को जब बढ़ाएं तो फिर हम सोचें कि उसके लिए क्या लवाजमात जो है वो दरकार है। जब लवाजमात जो दरकार शुदा है उनके ऊपर हम फोकस्ड हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें नफ्से मुतमईना इंशाअल्लाह बिल जरूर अल्लाह ताला ता करेगा, और ये बहुत जरूरी है दोनों जहान में कामयाबियां पाने के लिए जी। यही कोशिश की है कि छोटी सी आपके आगे रखी, और कोशिशें छोटी हो और लेकिन उनमें जो
कोड मैंने की है वो बहुत ग्रेट और वही हमारी जिंदगी का मासल जो कुरान पाक से हमने ली वर्सेस वो हमारी जिंदगी का मासल है जी। और फिर हम इंसानियत का ह्यूमैनिटी का दर्स हमने कहाँ से सीखा, हमारी कुरान ने ही हमें सिखाया कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और इंसानी जान कितनी कीमती है। और फिर हमने ये भी देखा और साथ साथ फीलिंग्स और हमारे मामलात, हमारे जज्बात, एहसासात, थिंकिंग और वर्ड्स ऑफ माउथ और क्या क्या है हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ। आज इसके ऊपर सीर हासिल गुफ्तगू रही। आई होप के आप लोगों ने सबने पसंद किया। मैं अब अल्लाह हाफिज भी कहती हूँ, बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज कहती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास एक फरमाशी सॉन्ग आया हुआ है जी के उसके बारे में जी, ये खुद ही सुन लें आप, ये सॉन्ग प्यारा है। इसी पर इक्तफा करती हूँ, ख़त्म करती हूँ अपने प्रोग्राम को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अपना डेरों डेर ख्याल रखिएगा। आशा अख्तर को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
2: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: अगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: जी मिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG। फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 81-83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR। टेलीफोन 07-885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड।
5: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
5: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07-414-26007 8।
7: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
7: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA। फोन 01274306567। बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
8: Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے محمود رضوی اکاؤنٹنٹس جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹس آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن وی اے ٹی بک کیپنگ پے رول فنڈریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹس محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضوی
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

ये ब्लड फ्लूरेसेंस रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। इसके अलावा हमारे वह बाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह बाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस बज़्म गजल उसने छेड़ी की इज्जत व तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर।

इंतहाई गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। इब्तिदा उसके नाम से जो हम सब का मालिक है, खालिक है, पालनहार है, राजिक है, वही जो हमारी छोटी से छोटी खता और बड़ी से बड़ी गलती को देखता है, सुनता है और उसे दरगुजर करने की कुव्वत रखता है। यकीनन वो हम सब का रब है।

0: AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट
12: टैक्सी लाइसेंस
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
3: मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम

जैसा कि मैंने बताया था कि कराची पाकिस्तान से हमारे हमराह एक बहुत हसीन जोड़ी जो मुझे बेइंतहा दुआओं से नवाजते हैं, जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा काजमी हमारे हमराह मौजूद हैं। और कहते हैं कि आपने आगाज प्रोग्राम में दिलों का मौसम और शहर का मौसम पूछा था, हमारे दिलों का मौसम हालात की बिना पर गड़बड़ है। महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी गैस मिट्टी का तेल थिनर और बाकी सब अशियाए खुर्दन की कीमतें आसमान तक पहुंच गई हैं। जी हाँ, मुझे इसका एहसास है कि अशियाए खुर्दन की कीमतें वाकई किसी भी मजदूर गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर हो गई हैं। यहाँ मौसम गर्म है, बादल छाए रहते हैं जिसमें शदीद बारिश का कोई इम्कान नहीं, आगे रब्बुल इज्जत की मर्जी, हफ्स शदीद है। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए और अपना रहम फरमाए, अहले पाकिस्तान पर अल्लाह ताला अपना खुसूसी फजल करम फरमाए ताकि वो इन मुश्किल हालात में जिंदा रह सकें। साथ ही साथ पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से मोहम्मद अली हुसैन साहब तशरीफ लाए हैं, उनके हमराह उनकी शरीक हयात भी मौजूद हैं और दोनों इस वक्त गजल उसने छेड़ी से मुस्तफीद हो रहे हैं। मोहम्मद अली हुसैन साहब, हमें याद है, मुझे याद है, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कहना याद हो, हम आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपकी प्यारी सी खूबसूरत हसीन दिलकश शख्सियत की मालिक आपकी प्यारी बिटिया को अल्लाह ताला तालीम की दौलत से मालामाल करे और आपका साया उनके सर पर सलामत रखे। मोहम्मद अली हुसैन साहब, क्योंकि आज आप पहली मरतबा हमारी बज़्म में आए हैं तो हम अपने पहले आने वाले मेहमान को कभी खाली हाथ वापस नहीं करते। मुझे बताइए, क्या सुनने का दिल जा रहा है आपका या आपकी बेगम का? जो आप कहेंगे उसके लिए मैं उस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। हम आपको एक मरतबा फिर दिल की तमाम तर गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा साहब, रिजवान रिजवी साहब का पैगाम और आया है कि पाकिस्तान का अल्लाह ही मालिक है, वो पहले दिन से अल्लाह मालिक है। किसी मशहूर शायर का शेर है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही, जब तक ये सहारा है चलता रहेगा मामला। कहते हैं कराची शहर तो लावारिस हो चुका है, जंगल का कानून राइज है, लूट मार मोबाइल स्नेचिंग का मोटरसाइकिल की चोरी तो आम हो चुकी। भाई ये बहुत छोटी छोटी, अब तो बहुत बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं और बड़ा नाम कमा रहा है कराची इस मामले में। अल्लाह ताला आप सब पर अपना फजल करम कायम रखे। तशरीफ लाए हैं जनाब शकील साहब, आप हमारे खूबसूरत लिसनर भी हैं, कॉलर भी हैं और अदब नवाज शख्सियत है इनकी। कहते हैं कि आज सोनू निगम की बर्थडे है, मैं उसका एक गीत सुनना चाहता हूँ। ज़रूर शकील भाई, हमारी जानिब से, हमारे तमाम सामीन और नाजरीन की जानिब से सोनू निगम को सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद। ज़रूर हम आपका गीत शामिल प्रोग्राम करेंगे। गीत मैंने नोट कर लिया है। अब हम चलते हैं कराची पाकिस्तान और जहाँ मौजूद हैं रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा काजमी। कहते हैं कि बस इनको देखता हूँ तो जीता हूँ, अल्लाह नज़रे बस से बचाए मियाँ, ऐसी बातें बताया नहीं करते। कहते हैं मैं एक शेर आ रहा था जहन में, एकदम जहन से निकल गया।

डॉक्टर कृष्ण बिहारी नूर का एक खूबसूरत सा शेर आपके नाम करते हैं, क्या हुस्न जमाल है, क्या रंग रूप है, क्या हुस्न है जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में ही जाए तो तन्हा दिखाई दे। भाई वाह वाह वाह वाह, अल्लाह ने ज़ेबत से बचाया आपकी बेगम को। रिजवान, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, खुश रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास। इससे पहले कि हम आपको बंदली लेकर चले, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर शकील साहब और खराज तहसीन, और सालगिरह का तोहफा पेश करना चाहते हैं सोनू निगम की खिदमत में, जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। हमारी जानिब से भी उन्हें सालगिरह की ढेर हो मुबारकबाद, हमारे सामीन और नाजरीन के जानिब से भी। साथ ही साथ आपसे दुआ की दरख्वास्त है। मेरे कज़न मारूफ शायर शब्बी मियां शुएब, शब्बी नाम है, तखल्लुस करते हैं शब्बी, शुएब शब्बी साहब, उनकी लंदन में तबीयत नासाज है, और इंशाल्लाह अगर आप सबकी दुआएं साथ रहीं तो उन्हें एक बड़े मुश्किल मरहले से भी गुजरना है। आप सबकी दुआओं के साए में वो इससे गुजर जाएंगे। आप सब से मुल्तमिस हूँ कि दुआ फरमाइए अल्लाह ताला शुएब शब्बी साहब को अपने कर्म से, अपने फजल से सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। अब हम चलते हैं, क्या क्या चीजें ढूंढ के लाते हैं यार शकील भाई, आप भी क्या खूबसूरत गीत आपने मुंतखब किया है, और आवाज सहर अंगेज सोनू निगम की है। और आपकी नजर करते हैं, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही या ख्वाब अजाबों की तरह, गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके मेरे खैमे मेरे ख्वाबों की तरह। और आपकी पसंद लेकर हाजिर हूं, कबूल कीजिए, आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया शकील भाई।

दोस्तों आप सुन रहे हैं बेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bedfordasianradio.co.uk पर। अभी अभी हमारी बज में तशरीफ लाए हैं खारिया गुजरात पाकिस्तान से परदेसी मजी साहब और सुनना चाहते हैं एक गीत जो हमने नोट कर लिया है और जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं इसके बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो आवाजें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर रहूंगा। बढ़ते ही कमर्शियल के वक्फे की जानिब साथ ही साथ मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा अपने उन नादीदा लिसनर्स और श्रोते मुजाहिदों को जो हमारे हमराह इस वक्त ऑनलाइन प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपको हम खुसूसी तोहफा देंगे एक खूबसूरत गीत की शक्ल में प्रोग्राम सुनते रहिए। आपकी आमद भी हमारे लिए बाई से सद इफ्तिखार होती है। हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01 2743066777 पर खुश आमदीद कहेंगे। मोहम्मद अली हुसैन साहब अभी तक आपने अपनी पसंद नहीं बताई है, क्या मुंह दिखाई लेंगे आप बताने की? बहरहाल अब हम चलते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। आपके सेगमेंट के साथ हाजिर रहूंगा एक शायर एक गीत दो आवाजें।

दोस्तों पहुंच गए ना माझी के झरोखों में, झांक के देखिए जिस वक्त ये गीत मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियों पर था पहला, वैसे ही आज भी से उसी जौक शौक और प्यार से सुना जाता है। आवाजें थी लता और शमशाद की और अब तशरीफ ला रहे हैं मोहम्मद रफी। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप सुन रहे हैं एक शायर एक गीत दो आवाजें और आज हमने ये गीत आपके लिए मुंतखब किया है। उम्मीद है कि आपको आज का सेगमेंट पसंद आएगा।

दोस्तों ये था आज का हमारा सेगमेंट, एक शायर एक गीत दो आवाजें। आज तो आवाजें तीन हो गई थी, कोई बात नहीं, अच्छी आवाजें सुनने से क्यों आपको महरूम रखा जाए। अब हम आपकी राय के मुंतजिर रहेंगे। अगला तोहफा हम भगत सिंह साहब, जो हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर हैं और आप लीड से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाते हैं, उनका तोहफा उनकी नज़र कर रहे हैं। हसब रिवायत भगत सिंह साहब ने तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे मिडिल्सब्रा, जहां तोहफा पेश करना है हमारी प्यारी सी बिटिया ब्रेडफोर्ड 3 से हमारे हमराह मौजूद हैं सुमैरा का, उनकी प्यारी प्यारी सी कजन्स के नाम, जो हमें मिडिल्सब्रा में सुन रही हैं। सुमैरा बिटिया, जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सेहत से रखे और तुम्हारा खाने पकाने और खिलाने का ये शौक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हमारी ये बिटिया हमारे प्रोग्राम के दौरान तमाम खाना वगैरह पका लेती हैं और इवन ये कि रोटी भी डाल लेती हैं, बकौल उनके टापों से भी फारिग हो जाती हूँ। ठीक है, तो बिटिया जीती रहो, आमद का बहुत शुक्रिया। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर लीड्स की हसीन फजाओं में। भगत सिंह साहब, आपकी आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

दोस्तों, हसब वादा अब हम आपको लिए चल रहे हैं ज्यादा दूर नहीं, मिडिलसब्रा, जहां मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 की तमाम कजन्स और सुनना चाहती हैं ये खूबसूरत गीत। अल्लाह ताला आपकी मेल और मोहब्बत और चाहत और प्यार का ये रिश्ता यूं ही कायम और दायम रखे और नजरे बच से बचाए। तशरीफ ला रहे हैं नेहा कक्कर और उनके जीवन साथी रोहन प्रीत। खूबसूरत गीत है, अच्छी पसंद है बिटिया आपकी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं बदल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारे साथ है 5 बजे तक। वक्त वह जा रहा है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद आपसे मुलाकात होगी जब हम खूबसूरत तोहफा लेकर हाजिर रहेंगे। रफाकत साहब एडम्बरा से हमारे हमराह मौजूद हैं, उनका तोहफा उनकी मोहब्बत और चाहत और प्यार के नाम और उनके अहले खाना के नाम करेंगे। हमारी नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के 4 कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर।

0: DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। इससे पहले कि हम खाड़ियां, गुजरात, पाकिस्तान आपको लेकर चलें, जहां पर देसी मजीद साहब अपनी पसंद का गीत सुनने के मुंतजर हैं। उनकी इच्छा ये थी कि जब शकील साहब तशरीफ लाएंगे उसके बाद मेरा गीत लगाइएगा, और आते ही मेरा मोहब्बत भरा सलाम शकील साहब की खिदमत में पेश कर दीजिएगा। परदेसी मजीद साहब, मैंने अपना काम कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम।
7: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
6: वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। शकील भाई, कैसे हैं आप?
7: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाएं, कैसे हैं?
6: अल्लाह का बड़ा फजल करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है।
7: तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
7: मैं खालिद सलीम मीर साहब हैं, नवीद भाई हैं, सूफी अब्दुल करीम साहब, रिजवान रिजवी उनकी अली हैं, अयूब भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, अली शाह हैं, तारिक जुल्फी साहब हैं, आशमी हाउस वाले हैं, हमायूं परवेज साहब, तौसीफ अहमद हैं, मजीद भाई हैं, वसीम शाह, महबूब बिलाई, शिजवी उनकी अली हैं, अयूब भाई हैं,

चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब है, अली शाह है, तारिक जुल्फी साहब है, आशमी हाउस वाले, हमायूं परवेज साहब, तौसीफ अहमद है, मजीद भाई हैं, वसीम शाह, महबूब बिलाई।

0: पलट के दौरे जमा,
1: पलट के दौरे जमा,
0: सुबह और शाम पैदा कर।
1: आहा, अच्छा ये अंदाज अपनाया है, वाह वाह वाह वाह।
0: पलट के दौरे जमा, सुबह और शाम पैदा कर, नए तरीक से दुनिया में नाम
1: पैदा कर। भाई वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत मतला है, अता कीजिए, वाह वाह वाह वाह।
0: पलट के दौरे जमा, सुबह शाम पैदा कर, नए तरीक से दुनिया में नाम पैदा कर।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तेरा मजाक उड़ाते हैं देखने वाले,
1: तेरा मजाक उड़ाते हैं देखने वाले,
0: अगर निजाम गलत है नया निजाम
1: नाम पैदा कर। आहा, क्या हिम्मत है, वाह वाह वाह वाह।
0: तेरा मजाक उड़ाते हैं देखने वाले,
1: आहा,
0: अगर निजाम गलत है नया निजाम पैदा कर।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: नजर को दूर बना, दिल को मरकजे असरार।
1: क्या बात है, क्या दूर की कोई राय, नजर को दूर बना, दिल को वाह वाह वाह वाह।
0: नजर को दूर बना, दिल को मरकजे
1: असरार,
0: गमे अलस से ऐशे दवाम पैदा कर।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। सुकून, सुकून मौत की तमहीद है जमाने में,
1: सुकून मौत की तमहीद है जमाने में,
0: लहू में हरकत सोजे दवाम पैदा कर।
1: भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह, लहू में हरकत सोजे दवाम पैदा कर, वाह वाह वाह वाह।
0: नसीमे सुबह की मानिंद मुस्कुराता चल,
1: क्या तस्वीर है, नसीमे सुबह की मानिंद मुस्कुराता चल,
0: गुलों की तरह जमाने में नाम पैदा कर।
1: वाह वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। फलक भी तेरी बुलंदी को पा नहीं सकता,
1: फलक भी तेरी बुलंदी को पा नहीं सकता,
0: हवस को छोड़ के लेकिन मकाम पैदा कर।
1: हाँ, ये मुमकिन ही नहीं है, हवस को छोड़ के लेकिन मकाम पैदा कर।
0: हमने हुस्न जहाँ ताब है तेरी हस्ती, हमने हुसन जहाँ ताब है तेरी हस्ती, जहाँ में पुख्ती इश्क काम पैदा कर।
1: वाह वाह वाह वाह, भाई बड़ी मुरस्सा गजल मुंतखिब की, वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। खुदा के नाम पे दुनिया को लूटने वाले,
1: आई है क्या मिसरा है, खुदा के नाम पे दुनिया को लूटने वाले,
0: खुद ही का दिल में जरा एतमाम पैदा कर।
1: आहा, क्या मुंह पे तमाचा है, भाई वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए इसे,
0: नाम पे दुनिया को लूटने वाले, खुद ही का दिल में जरा एतमाम पैदा कर।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते हैं,
1: दुश्मन
0: भी नाज उठाए वो काम कर शातिर, दुश्मन भी नाज उठाए वो काम कर शातिर, जमाना सर को झुका दे वो नाम पैदा
1: कर। भाई वाह वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह वाह।
0: तो ये गजल प्रोफेसर शहीद हसरत शाह पहले भी सुनाई थी मेरे ख्याल।
1: हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, अच्छी चीज तो बार बार सुनी जा सकती है।
0: तो ये है, महंगाई का आया है तूफान यकीन,
1: वाह वाह, महंगाई का आया है अब तूफान यकीनन,
0: तोड़े हैं हुक्मरानों ने पैमान
1: यकीनन, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: इंसान की तोहीन कभी इतनी नहीं थी,
1: बेशक, क्या मिसरा है, इंसान की तोहीन कभी इतनी नहीं थी,
0: इंसान की तोहीन कभी इतनी नहीं थी, रोटी है गिरा खून है अर्जा यकीनन
1: यकीनन, वाह वाह वाह वाह।
0: जिस हुक्म पे दहकान की मेहनत का सिला किया जब्त,
1: जिस हुक्म पे दहकान की मेहनत का सिला किया जब्त,
0: तहकीर के लायक है वो फरमान यकीनन।
1: आहा,
0: शुक्रिया। जिस जगह अफलास में दिन हमने गुजारे,
1: आहा,
0: अब होंगे वहाँ मौत के सामान
1: यकीनन।
0: हर जुल्म पे जब बंद रखे आंख कयादत,
1: हर जुल्म पे जब बंद रखे आंख कयादत,
0: तब तख्त के तख्ते का है इमकान
1: यकीनन, वाह वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह वाह।
0: हर जुल्म पे जब बंद रखे आंख कयादत, तब तख्त के तख्ते का है इमकान यकीन।

0: क्या सच्चा शेर है भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: जो दिल के खरे हैं उन पे कड़ा वक्त भले हो,
0: जो दिल के खरे हैं उन पे कड़ा वक्त भले हो,
1: मंजिल भी मगर उनकी है आसान
0: यकीनन। वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। ऐ देश की मिट्टी तुझे शादाब रखेंगे,
0: ऐ देश की मिट्टी तुझे शादाब रखेंगे,
1: तहकान बढ़ाएंगे तेरी
0: शान यकीनन। भाई वाह वाह वाह वाह भाई, वाह वाह वाह वाह। ता कीजिए, क्या खूबसूरत मंजर कशी है। वाह वाह वाह।
1: देश की मिट्टी तुझे शादाब रखेंगे
0: इंशाल्लाह,
1: तहकान बढ़ाएंगे तेरी
0: शान यकीनन।
1: तो आखिरी शेर समझते हैं।
0: अच्छा कीजिए।
1: सच पूछिए रशीद, हम में ही झूठ भरे हैं।
0: सच्ची बात कह दी आखिर में, सच पूछिए रशीद, हमें ही झूठ बड़े हैं।
1: देनी है खुदा ही को हमें
0: जान यकीनन। भाई वाह वाह वाह वाह, क्या मख्ता है और क्या एतराफ है। अता कीजिए, अता कीजिए।
1: रशीद हमें ही झूठ भरे हैं, देनी है खुदा ही को हमें जान
0: यकीनन। भाई वाह वाह वाह वाह, इस कदर खूबसूरत इंतखाब था शकील भाई, जितनी दाद दी जाए कम है।
1: शुक्रिया बहुत
0: बहुत शुक्रिया। आपको आपका सलाम मैंने पहुंचा दिया है मजीद परदेसी साहब का। अभी वाहवा का उन्होंने आगाज नहीं किया है। हाँ, बड़ी लंबी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।
1: ओके,
0: अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने जमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।
1: आपको भी
0: अल्लाह। आ गया उनका वाहवा, जरा सी देर से आया भाई शकील भाई, तो अब चले गए। बहरहाल उन्होंने आपके कलाम को परदेसी मजीद साहब ने खाड़ियाँ गुजरात में बेइंतहा पसंद फरमाया है, और अब वो गीत जो उन्होंने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई हैं शहनाज ब्रैडफोर्ड 3 से, नो ब्रैडफोर्ड 18 से, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। कह रही हैं कि भाई हमेशा की तरह उन्होंने मुझे बेशुमार दुआओं से नवाजा है। कहती हैं भाई ये खबीस लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होता है, हम आपको बताएंगे। ये बहुत बड़ा टाइटल है और एजाज है जो कम लोगों के हिस्से में आता है, और इसके लिए बहुत सी क्वालिफिकेशंस करना पड़ती हैं जब जाके ये टाइटल मिलता है। बहरहाल जीती रहो, दुआओं का बहुत शुक्रिया, हमारी भी ढेरों दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटिया। भाई के लिए जो दुआएं करती हो वो सब काम करती हैं, तुम्हें पता है ना, भाई को अल्लाह ने नई जिंदगी दी उस हादसे के बाद जो हमारे यहाँ हुआ था गार्डन में, और ये दुआएं हैं ना तुम्हारी, काम कर रही हैं। अब चलते हैं परदेसी मजीद साहब आपके तोहफे की जानिब, कबूल कीजिए। चलो भाई परदेसी साहब के पास पहुँचो।

और दोस्तों अब चलते हैं हम ब्रेडफोर्ड 18 जहां मौजूद हैं हमारी प्यारी सी बहना ढेरो दुआओं के साथ शहनाज और उन्होंने एक सवाल किया था कि खबीस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा एजाज होता है। परदेसी मजीद साहब ने लिखा है कि इस टाइटल के लिए बहुत सी किताबें पढ़ना पड़ती हैं जी, हजारों में से एक को मिलता है। जहाँ इसके लिए बहुत सी किताबों से ज़्यादा सबसे पहली बात यह है कि आपको झूठ बोलने का सलीका आना चाहिए और इसमें महारत हासिल होनी चाहिए। दूसरा, आपके दिल में ये बात मौजूद हो कि आप किसी को जहनी कोफ्त देते में रहने की सलाहियत रखते हैं और जो झूठ आप बोलते हैं उस ये पहली कंडीशन है तालीम इसकी कि आपको जो झूठ बोला है उस झूठ पे कायम रहना है और जो सच कह रहा है उसको हत्तुल वसा कोशिश करनी है कि उसे शर्मिंदा कर दें। फिर अगर आपके पास ये खूबसूरत सलाहियत मौजूद है तो उसके बाद आप खबासत के पहले दर्जे पर होंगे और खबासत का आला तरीन दर्जा ये है कि आपको उसका कोई फायदा ना हो लेकिन आप चाहें कि आप किसी को जहनी तकलीफ में मुब्तला कर दें, कोई ऐसी बात कर दें जैसे मियाँ आपके अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, घड़ी एक जगह रखते हैं उनको महज तंग करने के लिए, जहनी कोफ पहुंचाने के लिए वो घड़ी उस जगह से उठा के दूसरी जगह रख दें और बेचारे ढूंढते रहें और आपको इल्म है इस बात का, आप कहें कि भाई क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हैं कि घड़ी, अरे कहीं गलत रख दी होगी। यानी अपने झूठ पे अपनी उस बात पे कायम रहें क्योंकि आप उन्हें मेंटल टॉर्चर देना चाहते हैं। तो खबासत बहुत ही बड़ी लानत है। इसकी पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आपको झूठ बोलने के फन पर मुकम्मल उबूर होना चाहिए और झूठ बोल के कायम रहने के फन पर भी, कि आप शर्मिंदा कर दें जो सच बोल रहा है वो, कह यार मैं सब समझ रहा हूँ, मेरी अकल मेरा साथ दे रही है और मैं क्या करूं, और आप अपने झूठ पर कायम भी रहें। और फिर जो सबसे बड़ी बात है ये क्वालिटी पैदा होना के बाद आप में, वो ये है कि आपको शर्मिंदगी ना हो, आपको ये एहसास ना हो कि आपकी थोड़ी सी गलत बात में या गलत इकदाम ने जो आपने किया है किसी को जहनी कोफ में मुब्तला कर दिया है। ये जहनी मरीज होते हैं, उन्हें खबीस कहा जाता है, जिन्हें कुछ हासिल तो नहीं होता लेकिन दूसरे लोगों को कर्ब में और परेशान करके उनको सुकून मिलता है। अल्लाह ताला खबीसों से बचाए। ये है खबासत लफ्ज़, समझ में आ गए आपकी बात। खबीस लोग झूठे भी होते हैं, झूठ पे कायम रहने वाले भी होते हैं और दूसरों को खामखा तकलीफ पहुंचाकर उन्हें सुकून हासिल होता है, इसीलिए उन्हें खबीस कहा जाता है। आ गई बात समझ में शहनाज, बस इतनी सी बात है। और अब हम चल रहे हैं उस गीत की जानिब, गजल की, जिससे आपकी बचपन की हसीन यादें वाबस्ता हैं। खबासत आप समझ गए क्या होती है, ये हर शख्स, ये बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिन्हें ये नसीब होती है, वरना हर ऐसे गैर नतू खैर को खबीस होने का टाइटल नहीं मिलता। आपकी पसंद हाजिर है, बहुत सवाल करती हो तुम बेटा। और हाँ, जिस दुआ के लिए तुम फोन करती हो, अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, सेहत से रखे और बच्चों की बहारें देखो। आओ बचपन की हसीन यादों में तुम्हें लिए चलते हैं।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
11: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
12: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan?
3: Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
0: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: और दोस्तों अब चल रहे हैं हम आपको लेकर स्कॉटलैंड के खूबसूरत शहर ग्लासगो जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर रफाकत साहब अपने अहल खाना के हमरा और सुनना चाहते हैं खूबसूरत गीत कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम आपकी महफिल में आते हैं और हमें इंतज़ार रहता है आपके प्रोग्राम का ये आपकी मोहब्बत है रफाकत आपकी चाहत है आपका प्यार है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद हमेशा बाई से इफ्तिखार होती है हमारे प्रोग्राम के लिए आपकी पसंद ये गीत आपको बहुत ज़्यादा पसंद रह सकता है शायद पहले भी सुन चुके हैं कोई बात नहीं कोई भी गीत किसी को भी पसंद आ सकता है हाँ शेर आपने कहा था तो एक खूबसूरत शेर आपके नजर कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई गम नहीं मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई गम नहीं मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम मुझे जुदाई का कोई गम नहीं मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम आमद का बहुत शुक्रिया अहले ग्लासगो को हमारा मोहब्बत भरा सलाम

और दोस्तों हमारे बज में तशरीफ ला चुके हैं हमारे मोहतरम लिसनर शहरियार साहब, आप नॉर्थ हॉल से हमारे हमराह मौजूद हैं, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वो हमेशा की तरह इस वक्त अपने अहल खाना के हमराह मौजूद हैं और तमाम के तमाम मिलकर आज की गजल उसने छेड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। आपने जो गजल सुनना चाहिए हम जरूर आपकी नजर करेंगे, साथ ही साथ खुशामदीद कहना चाहेंगे AD चौधरी साहब को जो थोड़ी ही देर बाद M62 पर पहुंच जाएंगे, अभी पहुंचे नहीं है, कह रहे थे कि शायद आपके कमर्शियल का वक्त हो जाएगा, तो हम आपका तोहफा कमर्शियल के बाद ही पेश करेंगे। जनाब हमने कब कहा कि हम अभी पेश कर रहे हैं, इसलिए कि अभी तो हम चल रहे हैं हडर्सफील्ड की हसीन फजाओं में, जहां जनाब रियासत साहब अपने अहल खाना के साथ हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं और घूम फिर के आए हैं और कह रहे हैं ठंडा ठंडा शरबत पी रहे हैं। चलिए मैं ठंडा ठंडा पानी पीता हूं, आप शरबत पीजिए। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तोहफा हाजिर है, कबूल फरमाइए।

0: आगे बढ़ी और एडी चौधरी साहब का तोहफा पेश करी। हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान स्वीडन से हमारे हमराह मौजूद हैं नवीद मियां। नवीद, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं रफीक भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम फजल है। आप कैसे हैं?
1: जी करम अल्लाह पाक का।
0: खुशामदीद, खुशामदीद, जीते रहो।
1: बड़ी मेहरबानी। बस मुझे पता है कि आपका ब्रेक का वक्त होने वाला है। तमाम दोस्तों को मेहरबानी की मेरे से सलाम और अहले ज़ौक के नाम अहमद तरा साहब के चंद अशआर
0: अता कीजिए।
1: इसके चलो ये इश्क नहीं चाहने की आदत है।
0: आहा,
1: ये क्या करें हम एक दूसरे की आदत है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: तो अपनी शीशा घड़ी का हुनर न जाया कर।
0: आहा,
1: मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत
0: है। हाय हाय, मैं आईना हूँ मुझे टूटने की आदत है।
1: जी मैं क्या कहूँ कि मुझे सब्र क्यों नहीं आता।
0: आहा,
1: मैं क्या करूँ कि तुझे देखने की आदत,
0: आदत है। भाई वाह वाह वाह, क्या मुर्सा इंतखाब, जीते रहो।
1: शुक्रिया। और तेरे नसीब में है दिल सदा की महरूमी।
0: आहा,
1: हाय हाय हाय, तेरे नसीब में है दिल सदा की महरूमी। न वो सखी न तुझे मांगने की आदत।
0: मैं हूँ सखी न तुझे मांगने की आदत है। क्या बात है, क्या अता कीजिए, बहुत खूबसूरत।
1: तेरे नसीब में है दिल सदा की महरूमी, सखी न तुझे मांगने की आदत है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: और विशाल में भी वही फासले फिराक के हैं।
0: आहा,
1: विशाल में भी वही फासले फिराक के हैं कि उसको नींद मुझे रख देगी की आदत।
0: तो उसको नींद मुझे रत जगे की, क्या बात है, अता कीजिए ये शेर।
1: विशाल में भी वही फासले फिराक है, नींद मुझे
0: रत जगे की आदत है।
1: और ये मुश्किलें तो फिर कैसे रास्ते तय हूँ।
0: आहा,
1: ये मुश्किलें तो फिर कैसे रास्ते तय हूँ। मैं नासुर उसे सोचने की आदत।
0: भाई वाह वाह वाह वाह, क्या मुरस्सा इंतखाब है मियां, जीते रहो जीते रहो। वाह वाह वाह वाह,
1: शुक्रिया शुक्रिया। इस भाई ये खुद अजियत थी कब तक फराज तू भी उसे।
0: आहा,
1: ये खुद अजियत थी कब तक फराज तू भी उसे। मैं याद करके जिसे भूलने की आदत,
0: भूलने की आदत है। मख्ता अता कीजिए। भाई वाह वाह वाह वाह,
1: ये खुद अजियत थी कब तक फराज तू भी उसे।
0: आहा,
1: मैं याद करके जिसे भूलने की आदत है।
0: क्या बात है, क्या इंतखाब है। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया। तू अपनी शीशा गरी का हुनर न जाया कर, मैं आई ना हूँ मुझे टूटने की आदत।
0: आहा, क्या मुरस्सा इंतखाब था यार, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
1: बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।
0: आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अहले स्वीडन को और आपके तमाम दोस्त अहबाब को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। नवीद,
1: आपका सलाम पहुँचा जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, जीते रहो जीते रहो। आज असल में तंगी वक्त के बाइस ज़रा खुल के गुफ्तगू ना हो पाई। मैंने उनसे बताया भी था कि मेरे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस हाजिरी लगाना है मुझे आपके प्रोग्राम में। ये उनकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है और अदब नवाजी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नज़र बद से बचाए। नवीद, हमारी ढेरों दुआएं साथ हैं। वाह वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया। मुख्तसर लेकिन जामे, क्या खूबसूरत कलाम था।
2: मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk। दिस इज ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: एंड द विनर इज
4: योर बिजनेस बीइंग हर्ड ऑन द रेडियो।
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीज रोड फेस्टिवल
7: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
8: आप भी
7: जरूर आइएगा
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 124 लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
2: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
10: saferaider.co.uk UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: और दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें और आपको मोटरवे M62 पर लेकर चलें, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम AD चौधरी साहब और महवे सफर हैं मैनचेस्टर की जानिब, हम एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा भेजा है परदेसी मजीद साहब ने खारियां गुजरात पाकिस्तान से। कहते हैं ये तमाम दिल जलों के नाम है कि न तेरे जाने की खुशी, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, वो दिन गुजर गए जब तेरे दीवाने थे हम। न तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, वो दिन गुजर गए जब तेरे दीवाने थे हम। भाई वाह वाह मजीद, बहुत खूबसूरत इंतखाब, बहुत खूबसूरत शेर मुंतखब किया है। और अब हम चलते हैं मोटरवे M62 पर, उसके बाद हम आपको नॉर्थ हॉल लंदन लिए चलेंगे, जहाँ जनाब शहरयार साहब अपने अहले खाना के हमराह मौजूद हैं और एक खूबसूरत गजल सुनना चाहते हैं। चलें, पहले चलते हैं M62 मोटरवे पे। AD चौधरी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया।

अब हम बढ़ रहे हैं आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है जनाबे शहरयार साहब और उनके ऐसे खाना के तोहफे की जानिब जो हमारे हमराह मौजूद हैं नॉर्थ हॉल लंदन से और सुनना चाहते हैं एक बे इंतहा खूबसूरत गजल और एक शेर भी। बस तसव्वुर में उनके रहते हैं, बस तसव्वुर में उनके रहते हैं, उम्र यूं ही तमाम करते हैं। बस तसव्वुर में उनके रहते हैं, उम्र यूं ही तमाम करते हैं। आपकी पसंदीदा गजल लेकर हाजिर हूँ। शहरयार साहब आपका और आपके अहले खाना का बे इंतहा शुक्रिया इन मोहब्बतों चाहतों और प्यार का कि आप इस कदर बाकायदगी से तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए।

0: AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mela shopping.

0: 13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274 414760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: 13am, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
8: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस 106
7: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन थाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
11: बस ट्रक फोकलिफ्ट
12: टैक्सी लाइसेंस
11: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
11: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटली लेन ब्रेडफोर्ड
11: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
11: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
5: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
4: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
5: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
4: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
5: लीड्स रोड फेस्टिवल
4: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
5: आप भी
4: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
5: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
4: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
5: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
4: फर्स्ट चॉइस
5: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
5: 01274317644
6: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
7: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
5: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
7: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
5: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
7: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
5: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
5: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
5: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with funfair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
10: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम मैं मूत रिजवी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन वीएटी बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं मूत रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स मैं मूत रिजवी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं मूत रिजवी
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: इतनी हैंडसम हो जवान हो फिर भी कुंवारी आय हाय

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटर पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स
0: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
7: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
8: एक बार फिर मोर पार्क किलिंगहार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
7: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
8: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
7: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
8: लीज रोड फेस्टिवल
7: ब्रेडफोर्ड रीजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
8: आप भी
7: जरूर आइएगा
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
8: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
8: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
8: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
8: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
8: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुफट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
10: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
1: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
12: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
8: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
12: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
8: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
12: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
8: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
12: सेफराइडर.co.uk
13: UK.
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
1: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को। Mm-hmm.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाए दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 81/83 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306777 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306777 पर कॉल कीजिए। Bradford Asian Radio.
11: Call the studio now. 01274 306 677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306 677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duffield Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी चाहे बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving.
12: Bradford Asian Radio on 1413.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DesiFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lemba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan?
3: Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की खुआरी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन खाए
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
7: अरे सेफ पे रहेंगे
12: Bradford Asian Radio on 1413

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर्ड एजेंट रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, कितनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
8: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
6: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
8: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
6: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
8: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
6: 07548419678।
8: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
11: You're listening to Bradford Asian Radio,
12: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
7: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ट रोड ब्रेडफोर्ड में
6: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्रार उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
7: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
6: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
7: लीज रोड फेस्टिवल
6: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
7: आप भी
6: जरूर आइएगा
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
7: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
6: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644
8: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
9: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
9: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
9: आपकी शान
7: हमारी आन
9: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
10: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
9: सोफी ज्वेलर्स
10: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
9: सोफी ज्वेलर्स 121 ओकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
11: Looking to start driving or building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
12: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार्ड रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3 ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM

0: 13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: लीज रोड फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार किंग ऑफ भंगड़ा इब्राहिम उल हक अपने गानों से आपके दिलों को धड़काएंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे एंड संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीज रोड फेस्टिवल
5: ब्रेडफोर्ड एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: दुल्हन वो जो पिया मन खाए
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
6: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
6: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
6: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
6: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274491442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
9: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
8: सोफी ज्वेलर्स
9: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
8: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
0: To become a radio presenter, please call the studio 01274 306677. Bradford Asian Radio.
10: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे
10: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर
10: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
6: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड
10: 01274201679 UK. सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
10: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: 13 a.m. DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: फेस्टिवल 2026 मेला 15 एंड 16 अगस्त को
6: एक बार फिर मोर पार्क किलिंग हार रोड ब्रेडफोर्ड में
5: जहां पहली बार माया नाज लोक फनकार नईम हजारवी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे
6: फैशन फूड स्टॉल्स किड्स एंटरटेनमेंट और बहुत कुछ
5: एक खूबसूरत डे आउट आप सबके लिए सैटरडे संडे 15 एंड 16 अगस्त 2026
6: लीड्स रोड फेस्टिवल
5: बेफोर एजन रेडियो द ऑफिशियल मीडिया पार्टनर
6: आप भी
5: जरूर आइएगा उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे क्या ही चॉइस है आपका
6: ये चॉइस हमारा नहीं ये तो कमाल है फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का
5: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं
5: फर्स्ट चॉइस 106
6: लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644
7: फॉर क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी योर नंबर वन चॉइस फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर
6: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
6: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: जी मिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
6: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
6: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
6: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड
8: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
8: खूबसूरत कारपेट्स लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3 8DN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
10: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
3: حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے میں نوت رزوی اکاؤنٹنٹ جی ہاں چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹس بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام میں نوت رزوی اکاؤنٹنٹ آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی ٹیکسیشن وی اے ٹی بک کیپنگ پے رول فنڈریزنگ کمپنی فارمیشن مارگیجز اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹنٹ محمود رضوی گریٹ ہاٹن روڈ آن بریڈفورڈ 424453 محمود رضویز
11: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.